नमस्कार, प्रणाम, सत श्रीकाल, आदाब, हर हर महादेव, वंदे मातरम। श्रोता, आपने ट्यून किया आकाशवाणी एडलेड को 103.1 FM भारतीय प्रसारण का हिंदी कार्यक्रम मेरे यानी विनोद बिस के साथ। इस कार्यक्रम को आप ऑनलाइन भी सुन पाएंगे www.5bbi.com.au पर। श्रोताओं, जैसे मैंने अपने सोशल मीडिया पेज पर आप सब लोगों को सूचित किया था कि आज का ये जो एपिसोड है, हम एक तो अपनी भारतीय स्वतंत्रता, जो इस वर्ष 80वां स्वतंत्रता दिवस हमारे भारत की आज़ादी का विश्व के कोने कोने में हम सभी भारतीय मनाएंगे, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे एडलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया में होने वाले भारतीय कार्यक्रमों की, क्योंकि अब जो है त्योहारों का जो चलन है इस महीने से शुरू हो गया, और इसकी शुरुआत हम अपनी आज़ादी की इस पुण्य बेला से शुरू करते हैं, और दिसंबर अथवा जनवरी के महीने तक लगातार हम किसी न किसी कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं। तो आगे चल लिए बात करते हैं, फिलहाल सुनते हैं ये गीत हमारी माँ भारती को समर्पित।

तो मैं बात कर रहा था भारतीय स्वतंत्रता की, भारतीय स्वतंत्रता जो सैकड़ों वर्ष पहले मुगलों की और उसके पश्चात अंग्रेजों की गुलामी के 15 अगस्त 1947 को हमारे वीर शहीदों ने हमें ये आज़ादी दिलाई। इस आज़ादी के उत्सव को हम हर वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जब हमारे देश के प्रधानमंत्री तिरंगा लहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं, तो इसमें हम अपने अमर शहीदों को, जिन जिन लोगों ने, जिन जिन शहीदों ने इस आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और अंतिम सांस तक इस देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे, उन्हें इस लाल किले के प्रांगण से याद किया जाता है। तो हम अपनी आज़ादी को भूल न जाएं, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम सभी प्रवासी भारतीय विश्व के कोने कोने में अपनी इस आज़ादी के जश्न को बड़े धूमधाम से मनाते रहते हैं।

श्रोताओं, मैं बात कर रहा था कि कैसे हम ऑस्ट्रेलिया हो या किसी भी अन्य देश में, कैसे प्रवासी भारतीय अपने त्योहारों को यहाँ पर मनाते हैं और विश्व के कोने कोने में। तो इसी कड़ी में एडलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया में, ये तो वैसे भी फेस्टिवल सिटी के नाम से जानी जाती है, और हम भारतीय भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम सभी भारतीय यहाँ पर समय समय पर अपने उत्सव मनाते रहते हैं, अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए सभी प्रयत्नरत हैं। तो इसी कड़ी में जैसे 19 और 20 सितंबर को यहाँ पे बहुत बड़ा गणेश फेस्टिवल, जो यूनाइटेड इंडियंस ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया मनाने जा रहा है, उसका आयोजन है, और सार्वजनिक गणेश उत्सव भी इसी दौरान अपने गणेश उत्सव को यहाँ पर मनाता है, और हिंदू काउंसिल ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया दीपावली का बहुत बड़ा यहाँ पर आयोजन करता है। तो दीपावली के साथ साथ हिंदू काउंसिल ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया चैप्टर कई ऐसे अन्य कार्यक्रम आयोजित करती है जिससे हमें गर्व की अनुभूति होती है। इस कड़ी में हिंदू काउंसिल ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया एक अवार्ड जो विशेषकर महिलाओं के लिए उन्होंने आयोजित किया है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले सुनते हैं इस गीत को।

5BBA रेडियो के 103.1 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एडिलेड को भारतीय प्रसारण का हिंदी कार्यक्रम। मेरे यानी विनोद बिस्क के साथ इस कार्यक्रम को आप ऑनलाइन भी सुन रहे हैं www

0: श्रोताओं, मैंने जैसे बताया कि हिंदू काउंसिल ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया समय समय पर यहाँ पर कुछ न कुछ हमारे सांस्कृतिक और धर्म से संबंधित कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित करती रहती है, लेकिन उसके साथ साथ वे कुछ ऐसे प्रोत्साहन के रूप में हमारे प्रवासी भारतीयों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने इस महीने एक अवार्ड फंक्शन आयोजित किया है, जिसके बारे में उनकी कार्यकारी सदस्य अनुभा जी बता रही हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक खास सम्मान की, जो हर उस महिला के लिए है जो अपने काम से, अपनी मेहनत से समाज में एक अच्छा उदाहरण बनती है। इस सम्मान का नाम है गार्गी अवार्ड्स। गार्गी अवार्ड्स का आयोजन करती है हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी HCA के नाम से जिसे हम जानते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन, जब HCA ने सोचा कि क्यों ना उन महिलाओं को सम्मानित किया जाए जो हिंदू समुदाय की बेटियों और महिलाओं के लिए एक मिसाल बनती हैं। और इसका पहला समारोह हुआ था 2019 में। इस अवार्ड का नाम रखा गया है गार्गी वाचकनवी के नाम पर। वो बहुत पुराने समय की एक भारतीय विद्वान महिला थी, बहुत ज्ञानी, बहुत साहसी। कहा जाता है कि वो अकेली महिला थी जिन्होंने अपने समय के एक बड़े विद्वान को शास्त्रार्थ यानी बहस के लिए चुनौती दी थी। तो यह नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, यह ज्ञान और हिम्मत का प्रतीक है। अब बात करते हैं ये अवार्ड असल में करता क्या है। तो हर साल ऑस्ट्रेलिया भर से महिलाओं के नाम भेजे जाते हैं, फिर एक स्वतंत्र समिति इन सभी नामों को ध्यान से देखती है और जो महिलाएं चुनी जाती हैं उन्हें एक बड़े समारोह में सम्मानित किया जाता है, मंच पर सबके सामने तालियों के साथ। ये सम्मान सिर्फ एक कागज का प्रमाण पत्र नहीं है, ये एक पहचान है, ये एक हौसला है, और सबसे बड़ी बात, ये आने वाली पीढ़ी की बेटियों के लिए एक प्रेरणा है जो देखेंगी कि मेहनत का फल मिलता है। गार्गी अवार्ड्स में 7 अलग अलग श्रेणियां हैं ताकि हर क्षेत्र की महिला को मौका मिल सके। वो श्रेणियां हैं विजुअल आर्ट्स, स्पोर्ट्स, साइंस एंड रिसर्च, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लैंग्वेज एंड एजुकेशन, जर्नलिज्म और कम्युनिटी सर्विसेज। तो चाहे आप एक डॉक्टर हो, एक शिक्षिका, एक कलाकार, एक समाज सेविका या एक पत्रकार, गार्गी अवार्ड्स में हर किसी के लिए जगह है। और हाँ, ये अवार्ड सिर्फ हिंदू महिलाओं के लिए ही नहीं है, ये हर उस ऑस्ट्रेलियाई महिला के लिए है जो इन श्रेणियों में अपना योगदान दे रही हैं। और अब एक बहुत ही खुशी की बात, इस साल इन 7 श्रेणियों के लिए कुल 45 नामांकन प्राप्त हुए हैं, यानी 45 महिलाओं के नाम भेजे गए हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ खास किया है। और इस साल गार्गी अवार्ड्स की मेजबानी करेगा हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया का साउथ ऑस्ट्रेलिया चैप्टर, और यह समारोह होगा यही एडिलेड में 22 अगस्त के दिन। इस साल के समारोह में एक खास मेहमान भी शामिल होंगी, लुइजा ग्रेको, जो साउथ ऑस्ट्रेलियन मल्टीकल्चरल कमीशन की चेयर हैं। उनकी उपस्थिति इस समारोह को और भी खास बनाए। अगर आपको लगता है कि आप इन श्रेणियों में से किसी के लिए योग्य हैं, तो हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट hinducouncil.com.au पर जाकर सारी जानकारी देखिए। और याद रखिए, नामांकन सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, किसी और के लिए भी किया जा सकता है। अगर आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं जिसने अपने काम से एक अलग पहचान बनाई है, तो आप उसका नाम भी भेज सकते हैं। और हाँ, अगली बार जब नामांकन खुले तो देर मत कीजिए, खुद अपना नाम भेजिए। अपनी मेहनत, अपने काम को पहचान दिलाने का ये सही मौका है। हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया की स्थापना 1998 में हुई थी। ये एक ऐसी संस्था है जो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हिंदू समुदाय को एक साथ लाने का काम करती है, और ये 3 लाख से अधिक ऑस्ट्रेलियाई हिंदुओं की आवाज बनकर काम करती है। HCA हिंदू संस्कृति, त्योहारों और परंपराओं को बढ़ावा देती है और सरकार से मिलकर समुदाय की जरूरतों के लिए भी काम करती है। गार्गी अवार्ड्स, हर नारी की कहानी, हर नारी का सम्मान। धन्यवाद।

श्रोताओं, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ कि एक संत जा रहे होते हैं और रास्ते में देखते हैं कि तीन मजदूर काम कर रहे हैं, तो उसमें से पूछते हैं एक को कि आप जो ये काम कर रहे हैं, ये पत्थर जो आप तोड़ रहे हैं, ये किस चीज के लिए तोड़ रहे हैं। तो थके हुए मजदूर ने झन्ना कर संत को जवाब दिया, कहता है कि भाई मुझे क्या लेना, मैं काम कर रहा हूँ, बस मुझे शाम को दिहाड़ी मिलनी है, तो बस करे जा रहा हूँ। तो दूसरे को पूछते हैं सेम प्रश्न दोबारा दूसरे मजदूर को कि भाई ये जो पत्थर आप तोड़ रहे हैं, ये किस चीज के लिए। अरे बोला कुछ बना रहे होंगे, मुझे भी क्या लेना भाई, मुझे अपनी काम से मतलब, वैसे थकान लगी है, आप समय वेस्ट ना करें हमारा। तो वहीं संत जी तीसरे मजदूर को देखते हैं और वो मजदूर बड़ा मस्त हो के खुश हो के काम कर रहा है। तो संत जी ने पूछा कि भाई ये क्या काम हो रहा है, आप किस चीज के लिए ये पत्थर तोड़ रहे हैं। मजदूर ने कहा कि महाशय ये जो है मंदिर बन रहा है और इस मंदिर में बस मैं अपनी कल्पनाओं में खो कर काम कर रहा हूँ, कल मंदिर बनेगा, यहाँ पर भजन होंगे, हम ऐसे बैठेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां ऐसे ऐसे इसमें पूजा पाठ करेंगे। तो मित्रों, जिंदगी का ये जो अध्याय है हम सब पर भी ऐसे ही लागू होता है, काम तो सभी को करना है, अब आप उसको खुश होकर करें या रो कर करें। तो वैसे ही आज हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस रेडियो कार्यक्रम को, अपने यहाँ पर जो भी हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो एक ऐसी कल्पना में कि हमारा जो भविष्य होगा वो सुखदमय होगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इन सभी कार्यकलापों का अपनी संस्कृति की विरासत के रूप में लुफ्त लेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और फिर मिलते हैं।

0: क्या कहें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एडिलेड को 103.1 FM भारतीय प्रसारण का हिंदी कार्यक्रम मेरे यानी विनोद बिस्ट के साथ। इस कार्यक्रम का लुफ्त आप ऑनलाइन उठा पा रहे हैं www.5bbi.com.au पर।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं 5VBR रेडियो के 103.1 FM पर। जैसे कि मैंने बताया कि एडिलेड फेस्टिवल सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस आने वाले सप्ताह में शनिवार 15 अगस्त को एडिलेड और भी व्यस्त होने वाला है, क्योंकि हर संस्था, हर कम्युनिटी जो भारत से दूर अपने देश को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, वो अपनी आजादी का जश्न, 80वीं आजादी का पर्व इस वर्ष मनाने जा रहे हैं। आप इन कार्यक्रमों में जरूर शामिल होइए। उत्तराखंड एसोसिएशन भी इस बार किसी पार्क में, थोर्नन पार्क में अपने इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। यूनाइटेड इंडियंस ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया और हिंदू काउंसिल भी इस कार्यक्रम का कहीं ना कहीं आयोजन कर रही है। तो आप इन सभी लोगों से संपर्क में रहिए और अपनी आजादी का जश्न जरूर मनाइए। वंदे मातरम।